0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे, जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ऑलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे हैं?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो एलन मस्क तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार यह इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

ये दो अराजकतावादी समूह जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है। मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है और आज जो आपका एनार्किस्ट प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन अधिक इस देश में अस्थिरता पैदा कर सकता है, ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे कि जिन विदेशी ताकतों से बल पर आप अपनी बिकाऊ राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के गठजोड़ से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। लगातार राज्यों में आपकी हार हताशा दिख रही है कि आप कहीं न कहीं इस देश को शांति के साथ आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, लेकिन मैं आज के दिन आपको चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के राष्ट्रभक्त जनता आपको पूरी तरह से इसका करारा जवाब देगी और आज जिस प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की सरकार इसको कड़ाई से निपटेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जनता के बीच में रहकर आपके इस मंसूबे को कहीं न कहीं रोकेगा।

0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे। जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ऑलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क की उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो एलन मस्क तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

0: We have for you.
1: मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं और नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा वो हमारे साथ मौजूद है। सर इस साइड आइए, लाइट नहीं है। सर किस तरह से यहां पर अभी चल रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है दिल्ली में?
2: कुछ नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील भी है और उसी के मेजर्स लिए जा रहे हैं।
1: कितने लोगों को डिटेन किया होगा नई दिल्ली इलाके से? कितने लोग
2: प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं?
1: अच्छा, कुछ लोगों पर पथराव भी किया पुलिसकर्मियों को, चोट आई?
2: हाँ, एक जगह पे
1: पथराव हुआ। तो देखिए, ये सचिन शर्मा है जो एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे से ये बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। पथराव की बात भी इन्होंने कबूली है और इस तरीके से जो पूरी फोर्स है, ये बंगला साहब गुरुद्वारे के पास गोल डाक खाने का इलाका है, यहाँ पर जो सचिन शर्मा है डीसीपी नई दिल्ली वो यहाँ मौजूद है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है।
3: Speak. This is the BJP now holding a press conference with their MP, Sambit Patra, to speak in a short while. These are visuals coming in live. Remember earlier, their leaders, in fact, the BJP chief himself has hit out at the CJP over their protests. Of course, all of the CJP founders, their main leaders, leading the protests and the movement, rather, against the chief election commissioner, Gyanesh Kumar, they've all been detained at this given point. Let's listen in to what Sambit Patra will be saying. But yes, before that, as we were tracking all of those updates, Delhi police, of course, has been on the grounds, up and about, and ensuring that they've left no stone unturned to not just fortify the national capital, but also its borders, be it Noida, be it Gurugram, anybody they have suspicions of that they might be gathering for a protest. Because remember, the Jantar Mantar protest never could take place because people could not even reach that very location. But yes, Delhi police has taken very strict measure.
4: Adarniya Siddharth ji aur sabhi media bandhuon ko main dhanyawad deta hoon ki aaj is atyant mahatvapurna press vaarta ke liye आप यहां उपलब्ध रहे। भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रयास था, ये कोशिश थी कि भारत को बंधक बनाया जाए, राजधानी को बंधक बनाया जाए। कोशिश थी कि यहां आगजनी हो, कोशिश थी कि यहां मार पिटाई हो, कोशिश थी कि यहां पर सड़कों पर लड़ाई हो, मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस प्रकार लोकतंत्र ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड और उनका यह फ्लॉप शो नहीं चलने वाला है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, यह केवल आज की घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बंद बुलाया था, कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था। आज कुछ दूसरे तत्वों ने प्रोटेस्ट किया है, फिर 12 तारीख को एक प्रोटेस्ट बुलाया गया है। तो एक कालखंड में किस प्रकार से भारत में स्थितियों को बिगाड़ा जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मगर उसके पीछे के नियत को भी समझिए. देर इज एनार्की विद इन द एनार्किस्ट्स ऑल्सो. अराजक तत्वों के अंदर भी अराजकता है. किसको ये क्रेडिट मिले? तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गुत्थम गुत्थी चल रही है. आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का ठेका क्या कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है? ठेका तो हमने भी ले रखा है, तो हमारा डेट अलग होगा. तो कांग्रेस बोल रही है अच्छा, जेब में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, तथा कथित प्रति, अब उसके अंदर क्या है हमने नहीं देखा है, तथा कथित प्रति हम लेके घूमेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का दावा ये आम आदमी पार्टी करेगी, ये नहीं चलेगा, हमारा एक अलग दिन होगा. तो इस प्रकार एनार्किज्म विद इन द एनार्किस्ट यह भी चल रहा है. कल आप देखिए, राष्ट्रपति भवन गए थे कुछ राजनेता. राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के पश्चात राहुल गांधी जी का बयान एक नालायक नेता के बयान के समान है. मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द, मुझे भी कुंठा हो रही है बोलते, तकलीफ हो रही है. आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, ही इज द एलओपी ऑफ द कंट्री. मगर जब मैं कहता हूं एक नालायक नेता, इसलिए कहता हूं कि चलिए, आपने प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग किया, झूठ बोला, वो पूरा देश देख रहा है. आपने जिस प्रकार से भारत के संविधानिक पदों के लिए, संविधानिक संस्थाओं के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, पूरा भारत सुन रहा है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है. द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया. ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं. अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम. ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का. इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है. मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए. क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे. जब इलेक्शन कमीशन आपको बुलाती है कि हैकाथॉन के लिए आइए, आइए आप हैकाथॉन करिए हमारे साथ और आप ईवीएम को टेम्पर कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ईवीएम में सुधार लाएंगे, तो नदारत गायब. जब प्रेसिडेंट मैडम कहती है कि एविडेंस है तो दिखा दीजिए, बाद में एविडेंस देंगे. अगर बाद में एविडेंस देंगे तो आप गए क्यों थे? तो आप प्रेसिडेंट के पास गए क्यों थे बिना एविडेंस के? मतलब इतने दिनों से, मैं तो कहूंगा लगभग एक साल हो गया वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते हुए, उसका एविडेंस आपके जेब में रहना चाहिए था. क्यों नहीं था आपके जेब में? क्यों गए थे राष्ट्रपति भवन बिना एविडेंस लेके? और बाहर आके नालायक नेता कहता है कि राष्ट्रपति महोदया मान गई कि हम जो कह रहे हैं. आप सोचिए, यह व्यक्ति लायक है क्या देश के प्रधानमंत्री या एक उच्च पद में बैठने के? He himself proved that he is not responsible enough to occupy a high position in India. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ा और गंभीर, एक बहुत सशक्त विषय रखा था और वो विषय था तीन राज्यों में जो बाई इलेक्शन उपचुनाव हुए उसके नतीजे. असम में उपचुनाव हुआ, नौगांव में हम लोकसभा का चुनाव जीते हैं. कांग्रेस को कितने वोट आए हैं वो तो कल बताया गया, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया. वेस्ट बंगाल में दो असेंबली के चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, असम में असेंबली के चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए. नंदीग्राम हो या रेजी नगर हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई. और पुडुचेरी में एनडीए की जीत हुई. चार सीट के नतीजे कल आए, चारों सीट पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई. इनके जो वकील गए थे कांग्रेस पार्टी के और ये तथाकथित एनार्किस्ट के जो वकील कल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें फैसिलिटी चाहिए मी लॉर्ड, टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, वहां पर डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको सारे फैसिलिटी प्रोटेस्ट साइट पे चाहिए, प्रोटेस्ट साइट पे आपको डॉक्टर भी चाहिए, आपको टॉयलेट भी चाहिए। आपके कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी कर ली, मगर जब ये चारों नतीजे निकल कर आ रहे थे उस समय टॉयलेट मांगने के बदले आपको कहना चाहिए था मी लॉर्ड हमारे वोट चोरी हो गए हैं हमें बचाइए, क्यों नहीं कहा? अरे टॉयलेट मांगने गए थे, वोट चोरी का न्याय तो मांग लेते, आपके जेब में सबूत थे तो वो सबूत दिखा देते कि लॉर्डशिप देखिए ये सबूत है वोट चोरी हो गई बंगाल में, वोट चोरी हो गए नागांव में, गौरव गोगोई हमारा इतना बड़ा नेता उसके साथ धोखा हो गया आसाम में वोट चोरी हो गई और बीजेपी जीत गई, पुडुचेरी में वोट चोरी हो गई और एनडीए जीत गया, वहां जाके शौचालय मांगेंगे और वह शौचालय भी हमारी सरकार देगी क्योंकि आपकी सरकार तो शौचालय भी नहीं दे रही थी, और वोट चोरी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के सामने आप नहीं बोल सकते क्योंकि तथ्य नहीं। कल ये जो महानुभाव हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये तीनों निकल कर आए थे, वो ट्वीट ट्वीट और एक्स में सब खेला किया था इन्होंने। ये अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि रेजी नगर में जो असेंबली का काउंटिंग हो रहा है उसमें बूथ नंबर 109 में भारी गड़बड़ी हो गई है, वहां वोट चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई वोट? वहां कुल वोट जो है वो 772 है और बीजेपी को 772 में से 909 वोट मिल गया। रजिस्टर्ड वोटर 772, बीजेपी वोट्स रिपोर्टेडली सिक्योर्ड 909। तो ये कितना बड़ा घपला हो गया बूथ नंबर 109 रेजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे बिल्कुल, फोन पकड़कर अपने हाथ में फटाफट ट्वीट कर दिया, दिस इज एब्सोल्यूटली शॉकिंग, दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ ईवीएम टैम्परिंग। वो शॉक्ड हो के गिर पड़े और उन्होंने कहा कि एकदम ईवीएम टैम्परिंग हो गया है, उसका प्रूफ आ गया है हमारे पास। अरे भाई साहब, आप इतने शॉक हो गए, गिर पड़े, ईवीएम टैम्परिंग हो गई तो टॉयलेट क्यों मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? ये वाला क्या हुआ, ये वाला क्या हो गया? चले जाते इसको लेकर। आधे घंटे के बाद जिस चैनल ने ये चलाया था उस चैनल ने लिखा, अरे हमसे गलती हो गई, वहां पर रजिस्टर्ड वोट जो है वो 772 नहीं है, वो 1110 है, लगभग 1110 है, 1101 है। उसके बाद वहां के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर उन्होंने भी ट्वीट किया कि 1109 वोट है और ये फेक था, ये सब फेक था, और ये सीईओ की ट्वीट देखी, वो भी जानते हैं कि ये फेक है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी जानती है कि ये सब फेक था, मगर फेक न्यूज के आधार पर किस प्रकार से यहां एनार्की फैलाया जाए उसका पूरा षड्यंत्र ये केजरीवाल जी और उनकी कंपनी रच रही थी। अब आज एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं केजरीवाल जी से याद आ गया मेरे को, वो सुन तो रहे होंगे शौक धोके, केजरीवाल जी आप इतना शौक हो गए थे कल रिजी नगर में और एकदम कंक्लूसिव प्रूफ था ईवीएम टेम्परिंग का, तो अक्टूबर 8, 2026, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, अक्टूबर 8, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाला बागची एंड वी मोहना ने आपके 50 वार्ड म्युनिसिपल वार्ड पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसके 50 म्युनिसिपल वार्ड के इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया और कहा कि यहां पर मार्च से पहले फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। यह चोरी है या फेक न्यूज चोरी है? ये चोर मचाए शोर, जो सबसे ज्यादा चोरी किया हुआ है, जिन लोगों ने सबसे अधिक लोकतंत्र को और इलेक्टोरल प्रोसेस को खतरा पहुंचाया है, डैमेज किया है वो लोग यहां चोर चोर चिल्ला रहे हैं। मैं तो वो रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो एक ऑटोमेटिक डोर के सामने खड़ी थी और आप लोग थे उनके सामने, तो वो ऑटोमेटिक वो कुछ बोल रही थी कि चोर वोट चोरी हो गई, तो वो ऑटोमेटिक डोर अपने आप कुछ 10 सेकंड में बंद होता है, वो डोर बंद हो रहा था, रेणुका चौधरी धक्का दे रही, कौन बंद कर रहा है इस दरवाजे को, कौन कौन है ये। तो नीचे किसी ने कमेंट किया था ये मोदी जी डोर को बंद कर रहे हैं, मोदी जी डोर चोर भी हैं। अगर मोदी जी गलती से कल को बोल दे कि सांस लेना बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सभी सांस लें, तो मुझे तो शक है कहीं ये अपना नाक ना बंद कर ले, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सांस लेना जरूरी है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छापा है, अन्य अखबारों ने भी छापा है, नो कोरिलेशन बिटवीन SIR डिलीशंस एंड असेंबली पोल रिजल्ट्स बंगाल CEO। ये पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं एक 20 सेकंड के अंदर। डीकोडर, एक डीकोडर नामक इन्फ्लुएंसर है, कौन बैठे हुए हैं आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने बहुत हंगामा काटा। डीकोडर ने क्या कहा, डीकोडर ने कहा ये SIR में बड़ी गलतियां हो गई है, बड़े धांधली हो गए हैं बंगाल के अंदर, इसमें जो वोट काटे गए मुसलमानों के अधिकांश वोट कट गए, और उन्होंने कहा कि ये जो वोट काटे गए जो 5 टॉप मोस्ट असेंबली सीट थी जिनमें वोट काटे गए उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी आगे रही, फायदा हो गया। उन्होंने कहा, डिकोडर ने कहा कि 62% जो वोट काटे गए वो महिला की थी, महिलाओं की थी। तो ये पूरी खबर बन के छप गई, हर जगह सोशल मीडिया में चलने लगा, लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये मुसलमानों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, 62% महिलाओं की वोट कैसे कट गए, और 5 टॉप सीट्स जिसमें सबसे अधिक वोट कटे बीजेपी को फायदा हो गया। अब CEO बंगाल ने ट्वीट किया, CEO बंगाल ने ट्वीट करके कहा कि नो, मतलब मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कम समय है, पहले तो उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कहा, द इलेक्टोरल डाटा फॉर द वेस्ट बंगाल डज नॉट सपोर्ट द पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ डीकोडर, द 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द हाइएस्ट डिलीशंस शमशेरगंज चौरंगी मेटियाबुर्ज कोलकाता पोर्ट वेर वन बाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड जोड़ासंखो बाई बीजेपी, 4 तृणमूल कांग्रेस जीती है और 1 बीजेपी जीती है, द 5 विद द फ्यूएस्ट डिलीशन जिनमें सबसे कम डिलीशन हुआ, महिषा दल भगाबन पाऊ इंदस कातुलपुर और पातुषपुर, दे वेर ऑल वन बाई बीजेपी, जिसमें सबसे कम डिलीशन हुआ वो 5 बीजेपी जीती है, और महिलाओं का 50% वोट कटा है, 62% वोट नहीं कटा है, और देर इज नो डाटा बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, जो अधिकांश वोट मुसलमानों के कटे थे कोई डाटा नहीं है, ये डाटा गलत है कि 62% महिलाओं के वोट कटे और अधिकांश मुसलमानों के वोट कटे, तो यह भी सब कुछ गलत था। अभी कल, आज शनिवार है, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का दिखा रहा हूं मैं ही आपको, कल का है, आज के अखबारों में छपा है। YRCP कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि SIR में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। नथिंग रॉन्ग इन डिलीटिंग डेड शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द बेंच सेड दैट दोज हु हैव मूव्ड अवे कुड नॉट बी अलाउड टू वोट इन द वार्ड्स, नेम्स ऑफ डुप्लीकेट एंड डिसीज्ड वोटर्स ऑल्सो नीडेड टू बी स्ट्रक ऑफ एंड SIR टुक केयर ऑफ दीज एनोमलीज। जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं और जो डुप्लीकेट है वो SIR में स्ट्रक ऑफ हो गए हैं, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दिए हैं वो ठीक है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के कल का जजमेंट है। और मैं आपको अब असली कहानी पर आता हूं, ये सारा खेल क्यों हो रहा है। कुछ दिनों पहले जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेत्री हैं और जयराम रमेश जी को तो हर कोई जानता है, तो दोनों के एक एक ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं। जयराम रमेश, मात्र 12 घंटों के अंदर, मात्र 12 घंटों के अंदर ही एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी, जबकि अब तक वे इसके भारत में आने को लेकर लगातार आपत्तियां जताते आ रहे थे। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन साझेदारियों को खुद प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सद्भावना खरीदने के लिए स्टारलिंक के मालिक।
0: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।
5: वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
6: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।

0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे। जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ओलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क की उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे, जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ओलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क की उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, तो एलन मस्क तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम। ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: पहले एलन मस्क को समझ लेना चाहिए कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहां कुछ व्यवस्था से, नियम कानून कायदे से सभी निर्णय होंगे। जिनको वो इशारे से बोल रहे कि ओलिगार्क वगैरह, वो लोग भी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो हो, एयरटेल हो, वो भी स्टारलिंक के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बट सबसे मजेदार प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी जी का है। वो तो हम सबको कह रहे थे कि एलन मस्क के सामने, ट्रंप के सामने आप तो सरेंडर हो जाते हो, आप सरेंडर वाली पार्टी है, ये है वो है बोल रहे थे। अब क्या हो गया कि इतना सरेंडर हो रहे?
1: अब उन्होंने पहचाना है, बहुत देर से पहचाना, दिक्कत यही है ना, देर से पहचाना उन्होंने। अब एलन मस्क तो एलन मस्क है, एलन मस्क की उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो एलन मस्क तो एलन मस्क ही है ना। देखिए, उपभोक्ताओं को फायदा होगा, सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी को फायदा हो, बस इतनी सी तो बात है।

0: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है।
1: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Protests on the streets of Delhi against the chief election commissioner quickly turned into a battle over detentions. Several opposition leaders, including three former chief ministers, were detained during protests in the national capital. Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was detained from South Avenue, along with Derek O'Brien, Dola Sen and other party members.
1: जंतर मंतर जाने चाहते थे कि अभी ये दिख के आउट जो है वो हम लोगों को बहुत दफे इनवाइट किया था तो मैंने पहले आने का मेरे को मौका नहीं मिला तो मैंने जब आया इधर में तो तब मैंने सोचा कि दिस टाइम आई शुड हैव अटेंड दैट प्रोग्राम.
0: आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एंड केरलम लीडर ऑफ ऑपोजिशन पिनराई विजयन वर ऑल्सो डिटेन ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अलॉन्ग विद सेवरल लेफ्ट लीडर्स. Following their detention, the leaders took to social media to condemn police action.
2: आज जब कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और उधर से ध्रुव राठी, रत्ना सिंह, ये सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, देश के युवा बहुत गुस्से में हैं. जो जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं पूरे देश के लोगों को, युवाओं को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, हम सब लोगों को मिलके देश को बचाना होगा.
3: സമയം ഒന്നര ആയിരിക്കണു. ഇപ്പോഴും സഖാവ് പിണറായിയും ബാലഗോപാലും ഞാനും ഒരു ബൊലോറോ ജീപ്പില് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഡൽഹി നഗരത്തിലാണുള്ളത്. എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
0: Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi has issued a direct challenge to the Prime Minister, stating that the government can arrest leaders and the youth, but they will not back down.
4: Narendra Modi, Amit Shah, Mohan Bhagwat, Gyanesh Kumar, Ajit Doval, the villains of this story are slowly finding the space around them closing. We are closing the space. And we have said that India is going to get justice.
0: But the BJP launched back-to-back attacks on Rahul Gandhi and the CJP, claiming that Delhi cops foiled the opposition's bid to create anarchy in the capital.
5: ये दो अराजकतावादी समूह, जिसमें एक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी और दूसरे गुट का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी कर रही है. मैं इन दोनों गुटों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता पूरी तरह से आपके इन उद्देश्यों को देख रही है.
0: द बीजेपी देन फायर्ड अ फ्रेश साल्वो एट राहुल गांधी, कॉलिंग हिम एन अलायक नेता. द बीजेपी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग एन एनार्किस्ट हु फेल्स टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल.
6: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है. द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
7: झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, झूठ बोलने में वो माहिर हैं. कृपा करके राष्ट्रपति जी को बरक्ष दें.
0: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi took a jibe at the opposition, saying that those who obstructed the construction of Ram Mandir are the ones opposing PM Modi.
8: Jo Ayodhya mein Ram Mandir ke marg mein badak the, jo Kashi mein Kashi Vishwanath Dham ke nirman mein badak the, jo Maa Vindhyavasini Dham ke corridor ke nirman mein badak the, ve log aaj मोदी जी का विरोध कर रहे हैं.
0: The anti-CEC stir may have been contained for now, but the war of words rages on. Bureau report, India Today.
9: That's all we have for you in this bulletin. It's time for a short break now. We bring you more news updates on the other side. So stay.
10: Watching India Today.
11: के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले.
12: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
13: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट.
14: एक परिवार, अटूट भरोसा.
15: So many payment apps, but which one is safe?
16: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable. Keep getting rewards as well. You can also get 40 rupees cash back on your first payment above 40 rupees. Use Bheem app to pay.
17: It's the Mahi way.

0: साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन के नेता जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान, महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है।
1: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू।

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

भारतवर्ष का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर्स है और जंतर मंतर का क्षेत्रफल लगभग 4 किलोमीटर का है। तो भारत की कहानी जंतर मंतर की कहानी नहीं है। जंतर मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है और कुछ सोशल मीडिया के हैंडल में जंतर मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत की कहानी नहीं है। भारत शांत है, भारत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर दिल्ली के एक कोने में कुछ अराजक तत्व जिस प्रकार से अराजकता कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। मगर आज मैं आपको कह सकता हूं कि आज द एनार्किस्ट्स हैव फेल्ड। जो अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

0: कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने का प्रयास किया गया, मगर एक नालायक नेता ने राष्ट्रपति महोदया को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश की है। द एनार्किस्ट राहुल गांधी ट्राइड टू पुल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द एनार्किज्म विच ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कंडक्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, ये कहते हुए कि हम कल कुछ वोट चोरी के विषय को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गए थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मान गई कि हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोटोकॉल भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है कि आप कोई मेमोरेंडम लेके जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स द मेमोरेंडम, ये बेसिक प्रोटोकॉल है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र विराट है। मगर आपने कहा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसी सांस में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ एविडेंस है तो वो भी दीजिए। क्यों एविडेंस क्यों नहीं लेके गए थे? एविडेंस होगा तभी तो लेके जाएंगे।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.